0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tar